राम रमा कंठ उर धारिय उर धार हर हर पुरख पूरन पार ब्रह्म निरंजनो भय दूर करता पाप हरता दुसह दुख भव खंडनो।

तरह नाम नरहर निदान जिनकै रस भोग एक नारायणा रस रूप रंग अनंत बीठल सास सास ध्याएणा।

संत प्रभ बिपत निवारण तिस बिन अवर ना कोए जियो सदा सदा हर सिमरिया जल थल महियल सोए जियो जल थल महियल पूर रहया।

कौन सुआउ। साच कहो अरदास हमारी, हो संत जना बल जाओ। कह बे सहो कह रही है बाले, कह आवहो कह जाहो। नानक बोले सुन बै रागी, क्या तुम्हारा राहो। कट कट वैसे निरंतर।

दर्शन पेख करहो जोगिंद्रा, मुंद्रा चोली खिंथा, बारह अंतर एक सरे बहो, खट दर्शन एक पंथा। इन बिद मन समझाइए पुरखा, बाहुड़ चोट ना खाइए, नानक बोले गुरु।

कंध। सहज गुफा कर जाने साचा, नानक साचे भावै साचा। किस कारण रह तजो उदासी, किस कारण इहो भेख निवासी। किस वखर के तुम वनजारे, क्यों कर साथ लंघावहो पारे। गुरमुख खोजत पए उदासी, दर्शन कै ताई भेख निवासी। साच वखर

सुख नारद बचन सब सृष्ट करेन सच्चे लाए सच लगे सदा सच संभालेन नानक आए से परवान पए नानक आए से परवान पए जे सगले कुल तारेन महला तीजा

पौड़ी मनमुख मोगुबार है दूजै पाए बोलै दूजै पाए सदा दुख है नित नीर विरोलै गुरमुख नाम ते आई है माथ तत कढ़ोलै अंतर प्रगास।

पंजवां कबीरा हमरा को नहीं, कबीरा हमरा को नहीं, हम किस हूं के ना है जिन हो रचन रचाया, तिस ही माहे समाहे पौड़ी सफलियो बिरख सुहा।

लागी सुखमन पोचन हारी रे। तीर्थ बरत नेम सुच संजम रव सस गहने देउ रे। सुरत प्याल सुधारस अमृत इहो महारस पेउ रे। निचार तार चुवै अत निर्मल इहे

गुरमत नाम दमोदर पाया, हर हर नाम उर तहरे, हर हर कथा बनी अत मीठी, ज्यों गूंगा गटक समहरे।

हर हर हर उतारियो जन नानक नाम समाया। माली गौड़ा महला चौथा जप मन राम नाम सुखदाता। सतसंगत मिल हर साध आया गुरमुख ब्रह्म पछाता रहा।

0: सुख है।
1: गुर सेवा सदा सुख है, जिसनो हुक्म मनाए। सोयना रूपा सब तात है, माटी रल जाई। बिन नावै नाल न चली, सतगुर भू

जह दूजे भरम भुलाई है, गुरमुख जाग रहे दिन राती, साचे की लेव गुरमत जाती।

सुख दुख ही तै अमर अतीता गुरमुख निज कर पाएंदा शाम वेद रिग जुजुर अथर्वण।

गुर बिन मूख मुक्त क्यों पाई, बिन गुर राम नाम क्यों त्याई है। गुरमत ले हो तरहो पवद उत्तर, मुक्त पहे सुख पाया। गुरमत कृष्ण गोवर्धन थारे, गुरमत सायर पाहन तारे।

निर्मल शब्द कमाया, अदृष्टिय गोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, नानक को जुग जुग

पढ़ै हर नाम न बूझै, माया कारण पढ़ पढ़ लूझै। अंतर मैल अज्ञानी अंधा, क्यों कर दुत्तर त्रिजै।

ना गुरमुख हो गए सो सच कमावे साची करनी सारी हे कार कमाई जो मेरे प्रभ पाई हो मैं तृष्णा शब्द बुझाई।

कुसंगत बह सदा दुख पावे दुखो दुख कमाया सतगुर बाजहु संगत ना होई बिन शब्दे पार न पाए कोई सहजे गुण रह दिन राती ज्योति ज्योत मिलाया काया बिरख पंखी विच वासा अमृत जुग है गुरु शब्द निवासा उठ है न मूले न आव है न जाही निज घर वासा पाया काया सुध है शब्द विचार।

जो शरण परै तिसकी पत राखै जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै गुर कै शब्द भरम भौ।

गर्भ निवारण सर्व सुधारण किस कीमत कही न जाई है। सो पतवंता सो तनवंता जिस मन बसया हर भगवंता मात पिता सुत।

उपदेश तुट है सब बंधन, यो परम मोह पर जालना। जहरा खै सोई सुख थाना, सहजे होए सोई पलमाना।

पाखर शराशरयत ले कम्मावहो त्रिकृत तर्क खोज टोलावहो मारफत मन मारहो अब्दाला मिलहो हकीकत जित फिर ना मरा कुरान कुतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखो बदराही पंच मर्द।

गर्भ अगन मह जिन्हें उबारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओ सगल घटां का मालका चरण कमल शरणाई आया साध संग है हर जस गाया।

दरियाओ तृष्णा थकी नानका जामन रत्ता नाय लोयन रत्ते लोयनी कन्नी सुरत समाए जीव रसायन चूंडी रत्ती लाल लवाए अंदर मुश्क चकोलिया कीमत कही ना जाए पौड़ी इस जुग मह

शब्द बिन कबहु न छूटस बिरथा जन्म भयो रहाओ तन मह काम क्रोध हौ ममता कठिन पीर अत भारी गुरुमुख राम जपहो रस रसना।

गुरमुख जाता से जग मह काहे आया। गुर की सेवा कदे न कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वड भागी

प्रहलाद आप बिगड़िया, प्रहलाद आप बिगड़िया, सब चाटड़े बिगाड़े, दुष्ट सभा में मंत्र पकाया, प्रहलाद का राखा हुए रघुराया। हाथ खड़ग करता है।

जाने। दैत पुत्र प्रहलाद गायत्री तर्पण किशु ना जाने, शब्दे मेल मिलाया रहा। आन दिन

सो कृत करनी सार जप माली, हृदय फेर चलै तुध नाली। हर हर नाम जप हो बनवाली, कर कृपा मिल हो सतसंगत। टूट गई माया जमजाली, रहाओ गुरमुख सेवा काल जिन काली। तिस घड़िए शब्द सच्ची टकसाली। हर अगम अगोचर गुर अगम दिखाली, विच काया नगर लद्धा हर पाली।

हाँ तिन मत ऊतम तिन पत ऊतम जिन हृदय वसया बनवारी तिन की सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर

आओ। तब बुझी पूर्ण सब आसा, मिटे अंधेर भय प्रगासा, अनहद शब्द अचर्ज बिस्माद, गुर पूरा पूरा प्रसाद, जा कौ प्रगट भय गोपाल, ता कै दर्शन सदा निहाल।

हम मूढ़ मुग्ध किस बुझ नाही, तू आपे देह बुझाई, जो तुद पहावे सोई करसी, अवर ना करना जाई।

मेरी सखी सहेली सुनो पाए, मेरा पिर री सालू संग साए। ओ अलख ना लखिए कहो काए, गुर संग दिखायो राम राय। मिल सखी सहेली।

समाहे। ज्यों पावै त्यों रास ले, सुख नानक पूरा गुर मिले। बसंत महला पंजवां।

कुबजा उधरी अंगुष्ट तार बिदर उधार्यो दास्त पहाए रे मन तू पी हर त्याए।

सहज अवल तूड़मणि गाडी चालती पीछे तिनका लेकर हांकती जैसे पनकत थ्रू टिट हांकती।

भेद तन सुगंध ढूंढे परदेश अप तन का जो करे विचार तिस नहीं जम कंकर करे खुआर।

तिस अर्पौ सब सुख जाई। एक निमुख प्रैदर्स दिखावे तिस संतन कै बल जाई। करो निहोरा बहुत बेनती सेवों दिन रह नाई। मान अभिमान हों।

अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाहीं चित डोले मन ही ते मन मानिया।

सहज धुन उपजै, मन साचै लिवलाई, अगम अगोचर नाम निरंजन, गुरमुख मन वसाई। एक समय सब जग तो वरतै, विरला एक पछाण, शब्द मरै ता सब किश सूजै, अन दिन एको जाने। जिसनो नदर करे सोई जन बूझै,

लख जीवन, लख स्यों प्रीत होवै लख जीवन, क्या खुशियां क्या चाओ, विछड़िया विस होए विछोड़ा, एक घड़ी महंजा।

नौ तन प्रीत सदा ठाकुर स्यों, अन दिन भगत सुहावी, मुक्त भय गुरदर्श दिखाया, जोग जोग भगत सुभावी।

तीर्थ अड़सठ मज्जन नाई सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सतसंगत की तूर परी उड नेत्री सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ जाहर नवी

सतगुर हर हर नाम दृढ़ावै, हर बोलहो गुर के सिख मेरे भाई, हर पौ जल जगत तरावै रहाउ, जो गुर पौ जन पूजे सेवे, सो जन मेरे हर प्रभ पहावै, हर की सेवा सतगुर पूजहो, कर कृपा आप तरावै, परम भूले अज्ञानी अंधले,

तेरा मन बिगसै हौ तिन कह सद बल जांत। ज्ञानी हर बोलहु दिन रात, तिनकी तृष्णा भूख सब उत्तरी, जो गुरमत राम रस खांत रहाव। हर के दास साध सखा जन, जिन मिलिया लह जाए प्रांत। ज्यों जल दुध पिन पिन काढ़ है।

कहो नानक मेरो बनयो सुहागो पत शोभा भले अचारे। मलार महला पंजवां। प्रीतम साचा नाम त्याए

भाव भगत सरोवर उछले सुपार भरे बहन जिन्ना सतगुर मन्या जन नानक वड भाग लहन। महला चौथा हर हर नाम असंख हर।

सतसंगत मह हर हर वसया मिल संगत हर गुण जान वड्डा भाग सतसंगत पाई गुर सतगुर परस भगवान गुण गावहो प्रभु।